माहितरिका फोर कोत्ते मुमिदानी दोंत कांबड़ नुए फातुं को कोई कन्य नुआने कोको एकन उलेती डॉक्टर दक्कम में स्तादिवाने था एहम भी मैकम में सार में वारा फरवा तेरी कमाई की एबकोरा।

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवही एफएम
1: दिवही एफएम
0: दिवही नाइक दिवही नाइक
2: मोदी है 1 मेगाहर्ट्ज दिवही एफएम

0: गेस्ट आरजे
1: आज वार फोर ही गधा लवाये कुम मेरे के मैं प्रोग्राम फैशन के मिल गयी
2: तो हम कुरीर वाले हैं पुनी तो
1: आ कुरी गाँव में बदुस समा कुरी रोन ताहरों में गाँव ना ने तो ताहरों में गाँव में कुद्दे कंटे ताऊ ना ने गाँव में कुद्दे नहीं कुंक में तो ना हाँ शे गाँव में कमें कुद्दे वे तो हुरी हमें बालाशे नन्नोट करूँ कुरिया गेंदा में और मैं मिप्पा को रहा है कि मेरे के नोगड़ी बाया ही शाबंग इराद करे व्या कुरिया दाना कुरिया दायर वो हम मैं एकी एकी इहुन तेरी ना गुड़ा लाएगे तफात वाह के ता हम मिप्पा को राम के तेरे ये विगं दान का हमें उम्मीद करने मैं मेरे का मालू की दिवस्से का वीति फहर वेरी वानी की वे है ये गाँव में दो गाँव में मालू है मियो थी हम मैं मालू वा नन्नोट करूँ गेंदा में माजिन को वा गोली फोरी
2: गोली फोरी अस्सलाम वालेकुम
1: बुरा
2: कुत्ती
3: ए बोलतर टीम का इन्ना ने हुकुरिया हुकुरका
2: आहा ए वाली दो
1: मतरो आदेश बोलतर टीम भी फैन ने बोलिन दो
2: आय
3: के आ ए नु माने ए मी हारमेंगे बिबे हारमेंगे बिमुगा तंगुले जेने एक हारमेंगे पोते
2: आ हारमेंगे पोता हारमे काब फैन इन उळु बिगोता ए रीति आदतक उसूदा ए नु
3: आ ए नु
2: ना रंगल वर रंगल मरता इंगे कीने कीने दे मेद कों कमेगा मिरे मिगवगु तुती उळेनी
1: बराबर मर तक मेरे मौलू निवाह
3: हजरत कुरी दुआ
2: ಮರಿಯಂ ಇದ್ಲೆ ಬಾಪಾಲವು

कभी कभी सबसे बड़ा सफर वो होता है जहां हम किसी नई जगह नहीं बल्कि उस मोहब्बत के पास जाते हैं जिसे हम खो चुके हैं।

0: दत्ता कोलम नोरे में गोंडी गई शींदे आहारे कोलम हुरे लफाना दत्ता ही शींदे
1: हाँ जंगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया